0: सच कहिंदी गुरबाणी गुरु शब्द विचार।
1: ए जो जन्म मनुख बस मिले एक बार,
0: सच कहिंदी गुरबाणी गुरु शब्द विचार।
1: मेल शब्द सुरत वाला हो जाए, मेल शब्द सुरत वाला हो जाए, जोत सच दी नजर जाऊ
0: आओ करिए वाहे गुरु दे जापनू लिए जीवन नु सफला बना। आओ करिए वाहे गुरु दे जापनू लिए जीवन नु

चित्त प्रभ मेला ओ केड़ी सुहावी रुत ओ केड़ा वेला सुहावा ओ वड़पागा समा केड़ा होवेगा जदों उस मालक दे नाल एक मिक होन दा वेला होएगा मेला होएगा मेल मिलाप होएगा जोग होएगा। सारे एक दो बार सुनोगे शायद तुहाडे वास्ते ये नवी रीत है नवी कंपोजिशन एक दो बार सुनो ते फिर सारे ने गाना नाल नाल स्पेशली मेरिया बच्चिया मावा भेणा उन्हां दी आवाज बहुत अच्छी तरह लगेगी।

0: हम निर्गुणा लेहो बारी सद बख्शेंद सदा मेरवाना सबना दे अदारी नानक दास संत पाचे परयो राख ले हो एह बारी सद बख्शेंद सदा मेरवाना सबना दे अदारी नानक दा संत पाचे परयो राख ले हो एह बारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी सोट महला पांजेवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चो गिद हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहा नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेवन बिरती जासी आनंद करे तेरे दासा जब पूर्ण हुई आसा बिलावल महला पांजेवा ताती वाह न लग गई पार ब्रह्म शरण आई जो गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बंट बनाई राम नाम अव खुद दिया एकाली बलाई रहा राख लिये तिन रखन हार सब ब्याध मिटाई कौ नान किरपा भई प्रभ भय सहाई सलोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटे निकट न जाई ओ दूत सलोक महला पांजेवा मन में चित बो चित बनी उदम करो होठ नीत हर कीर्तन का आहरु हर देहु नानक मीत सोयला राग गौड़ी दीपकी महला पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखिए करते का हुई बीचार तित कर गाव सोहेला सेवरे हो सिजनहार तुम गाव हो मेरे निर्भव का सोहेला ओवारी जित सोहेला सदा सुख हुए रहाओ नैत नैत जी अड़े समालियन देखेगा दे वनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजन असीसड़िया ज्यो होवे साहेब स्यो मेल कर करे हो पहुचा सदड़ नित पवन सदन हारा सिमरिये नानक से देह आवन रागा समहला पहला शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त हुए सो कर रख वडाई तू ही रहा विश्वे चसिया कड़िया पहरा तिती वारी माह हुआ सूरज को रुत अनेक नान कर दे के तेवेस रागत नासरी महला पहला गगन में ताल रव चंद दीपक मनय तारका मंडल जनक मोती धूप मले आन लो पवन चवरो करे सगल बुनराय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खड़ना तेरी आरती अनहता शब्द वाज अंत भेरी राव सहस तब नैन नन नैन है तुहे को सहस मुत नायक तुही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बैन सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए ज्योतिष भावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभ तमनो अन दिन मोहे आही पियासा कृपा जल देह नानक सारंको होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूरी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरली मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाउ सागत हारा साधना जानिया तेने अंतर होमे कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभ दुख पाव है ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸੇ ਡੰਡਾਏ, ਹਰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੇ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੁਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਹੇ, ਹਾਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ।

सुखमंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पांजेवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा खाड़ चलो हर लाहा आगे बसनो सुहेला औद कटे दिन सुरैनारे मन गुरमिल का सवारे रहाओ यो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पी आवे इहु रस आकात कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहज।